0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल अवेलाजी सुनत अमल ले
3: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो
2: नो बिल्कुल मायूसके गई मा मायूसके गई मा अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे
3: और दोनों मालूमातों दे पारा पदक नंबर काल कवले शे
2: 0319-55-23-404
0: वेलकम टू रेडियो
4: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरत का इलाज सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान हल।

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल ले अवेलाजी सुनत अमल ले
3: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो
2: नो बिल्कुल मायूसके गई मां मायूसके गई मां अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे
3: और द नूरु मालूमातो दे पारा पदग नंबर काल कवले शे
2: 0319 55 23 404

इसी तरह से अगर आप घर में सोए हुए हैं, रात का वक्त है, तो आपको लगता है कि कोई आपके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, और वो उसका मकसद भी ठीक नहीं है उसके, क्योंकि जाहिर है रात को अगर कोई आपकी इजाजत के बगैर आपके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है तो उसका जाहिर सी बात है कि उसके इरादे ठीक नहीं है। तो उसके अगर इरादे ठीक नहीं है और वो ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको वार्न करें, अगर वो नहीं रुकता तो आप उसको शूट कर दें। ये भी कानून आपको इख्तियार देता है कि आप उसको शूट कर सकते हैं। इसी तरह आप कहीं जा रहे हैं, आपके घर वाले आपके साथ हैं, खवातीन आपके साथ हैं, और कोई खवातीन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और आपको अंदेशा है कि खुदा न ख्वास्ता ये बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, तो अगर आपके पास असलहा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो आप उसको शूट कर सकते हैं ऐसे शख्स को। ये कानून आपको मुकम्मल इस चीज़ की इजाज़त देता है, तहफ़ फराम करने की इजाज़त देता है, बल्कि कानून आपको इस हद तक भी तहफ़ फराम करने की इजाज़त देता है कि अगर आप जा रहे हैं और आप देखते हैं कि गली में, मोहल्ले में, कहीं पे भी, रोड पे कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को लूट रहा है, आपको नहीं लूट रहा, या किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है, आपको नजर आ जाता है, तो आप उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए, वो जो मुलजिम है, वो जो काम कर रहा है, उसको शूट कर सकते हैं। लेकिन शर्त उसके लिए क्या है कि आपके पास अगर असलहा हो तो वो लाइसेंस्ड असलहा हो। हमेशा अपनी प्रोटेक्शन के लिए असलहा साथ रखें, लेकिन लाइसेंस्ड असलहा। अब ये हमारे इलाके में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप पंजाब में घूम रहे हैं, आप लाहौर में हैं, आप वहाँ तो रात को 2 बजे 3 बजे आप घूम रहे हैं, आपको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं होता। लेकिन हमारे इलाकों में आजकल जो है वो हालात बहुत संगीन नौयत इख्तियार कर चुके हैं। तो ये एक बुनियादी चीज़ थी जो मैंने समझा कि मैं अपनी आवाम तक रखूँ, आवाम को बताऊँ कि जी जो तहफ़ फराम करना है वो रियासत की जिम्मेदारी है, और अगर रियासत उसमें नाकाम होते हुए हमें नज़र आती है या नज़र आए तो वहाँ पे आवाम अपने आप को ख़ुद भी तहफ़ फराम कर सकती है। इसके अलावा एक और यहाँ पे जो बहुत ज़रूरी चीज़ है मैं बयान करना चाहूँगा वो है एतबार। आजकल आप यकीन, एतमाद, एतबार किसी पे भी ना करें। आजकल आपका दोस्त, आपका करीबी जानने वाला वही आपका दुश्मन हो सकता है, वही आपको एतमाद में, एतबार में संगीन नुकसान पहुंचा सकता है। मैं अपनी बात करूं, मेरे घर में ऐसा वाकया हुआ कि मुझे जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो मेरे करीबी लोगों ने पहुंचाया। अब वो चूँकि आपको एतमाद होता है, आपको यकीन होता है, आप ख़ुद को जो है वो तैयार नहीं रखते किसी भी ख़तरे के लिए, और आप उस एतमाद में जाके जो है ना वो उसमें चले जाते हैं, उस फ्लो में, और फिर आपको संगीन नुकसान का। और आजकल टांक में अगर आप देखें तो हर दूसरा तीसरा जो वाकया

रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई करीबी जानने वाला दोस्त अहबाब में से कोई ना कोई शामिल होता है। तो इस तरह से जो है आपने तहफ़ फराम तो खुद को करना है, तहफ़ खुद का तहफ़ करना है, लेकिन साथ में अपना अकल भी इस्तेमाल करना है, अकल व फहम से काम लेना है, आपने दिमाग अपना खुला रखना है और सोच समझ के आपने फैसला करना है। ज़्यादा जो है वो आपने किसी पे एतमाद नहीं करना, किसी पे यकीन नहीं करना, वरना आपको आजकल के हालात में ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

अच्छा, तो एफआईआर दर्ज करवाते वक्त अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी चूंकि बहुत सारे वकूए ना मालूम होते हैं, किसी ने देखा नहीं होता, लेकिन पश्तों का इलाका है, रिवाज है, लोगों को पता ज़रूर चल जाता है कि मेरा मुजरिम कौन है, किस कौन मेरा दुश्मन है, किसने मेरे साथ ये काम किया है। लोगों को इस चीज़ की खबर ज़रूर होती है कि मेरे प्यारे को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है, मेरे साथ ये जुल्म ज्यादती करने वाला कौन है। लेकिन चूंकि जिसने आपको नुकसान पहुंचाना है उसने अकेले में ढूंढ के पहुंचाना है, तो चश्मदीद गवाहान जो हैं वो पराए लोग होते हैं, अपने बहुत कम होते हैं। लेकिन कानून कहता है, कानून की मंशा है कि गवाहों के बगैर आप किसी को सजा नहीं दिलवा सकते। पाकिस्तान में सजाएं वैसे ही कम हैं, 98% केसेस में लोग बरी हो जाते हैं। उसमें जो 2% लोग हैं जो सजा होते हैं, उनमें चश्मदीद गवाह का होना बहुत जरूरी है। अब चश्मदीद गवाह जब आता है अदालत में या एफआईआर में, तो उसने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। वो सबसे पहले कि उसने जब गवाही देनी है तो वो गवाही उसने ऑन ओथ देनी होती है, यानी कसम उठा के देनी होती है, उसने अल्लाह की कसम उठा के फिर उसके बाद वो गवाही देनी होती है। फिर यहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर हम गवाह डाल देंगे तो कल कना झूठी कसम उठानी पड़ेगी, झूठी गवाही देनी पड़ेगी, तो फिर हम क्या करें। तो भाई ये कानून की मंशा यही है, कानून का बुनियादी उसूल ये है, प्रिंसिपल ये है कि गवाही आपने कसम खा के ही देनी है। और गवाह नहीं है तो आपको आपका मुलजिम भी पता है, वो छूट भी जाएगा। तो यहाँ पे छूट झूठी गवाही का फिर आंसर सामने आता है, तो उसकी किसी मौलवी साहब से आप पूछें, वो आपको सही वजाहत देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ कानून बताने बैठा हूं जो कि इंतहाई जरूरी है। गवाही क्यों जरूरी है कि अगर हम कुरान पाक का मुताला करते हैं और कुरान में अल्लाह पाक ने जो जुराइम और उनकी सजाएं तजवीज की हैं, बताई हैं, तो उन सजाओं को दिलवाने के लिए अल्लाह पाक ने एक क्राइटेरिया भी सेट किया है। और वो क्राइटेरिया ये है कि जी आपने अगर किसी जुर्म को साबित करना है और उस पर हद का लागू होना, हद क्या मतलब, वो सजा जो अल्लाह और उसके रसूल ने शरीयत में बता दी है, उस सजा को दिलवाने के लिए क्या तरीकाकार फॉलो किया जाएगा, ये हमें कुरान बताता है। अब अगर आप मोटी मोटी मिसाल लें और जिना की एग्जांपल लें, मिसाल को अगर आगे रखें, तो कुरान कहता है कि अगर किसी शख्स ने जिना किया तो उसको संसार किया जाए अगर वो शादीशुदा है। अब संसार करने के लिए जो क्राइटेरिया बता दिया है वो 4 गवाहान तस्कियतु शहूद पे जो पूरा उतरते हों उनके बारे में बता दिया। अब 4 गवाहान तस्कियतु शहूद पे पूरा उतरने के मुताबिक मतलब यह है कि 4 लोगों ने उनको जिना करते हुए देखा है और वो 4 मर्द जो हैं वो बड़े नेक और अच्छे लोग हैं। अब इतना मुश्किल क्राइटेरिया रखने का मकसद ये था कि कोई किसी पे झूठा इल्जाम जिना का लगा के उसको सजा ना दिलवाए। तो आजकल के दौर में आपको ऐसे 4 लोग कहां मिलेंगे। तो इससे हमारे जो कानून है पाकिस्तान का, वो इसी चीज से जो है इनसार लेता है, इसी चीज से तकवियत लेता है कि जहां पे कुरान ने इतना सख्त क्राइटेरिया रखा है किसी जुर्म को साबित करने का, वहां पे हमारे कानून ने भी फिर सख्त क्राइटेरिया रखा है जुर्म को साबित करने का। क्योंकि कानून ये देखता है कि एक बेगुनाह अगर सजा हो जाए खुदा ना खास्ता, तो उससे बेहतर है कि आप 100 गुनहगारों को बरी कर दें। एक बेगुनाह को सजा देने से बेहतर है कि आप 100 गुनहगारों को सजा दे दें। मैंने बारहा अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस में देखी ये बात, यानी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, शायद इतना 3.5-4 साल ही मैं प्रैक्टिस से मुझे जुड़े हुए हो गए। इसमें एक चीज मैंने देखी है कि मेरे सामने कोई तकरीबन 10-12 ऐसे केसेस गुजरे होंगे जिसमें सजाएं हुई हैं, कत्ल के केसेस जिसमें उम्र कैद, एक आध अगवा का केस था जिसमें 10 साल सजा हुई, बाकी कत्ल के केसों में जो सजा हुई है, तो वो सजाएं मैंने देखी, तो उन सजाओं में तकरीबन हमारे पास 10 केसेस मुझे याद पड़ते हैं। उन 10 केसेस में एक केस जो मेरे सामने गुजरा उसमें 100% बेगुनाह शख्स को उम्र कैद की सजा हो गई। अब वहां पे बेगुनाह शख्स जो है वो सजा हो गया, कत्ल किसी और ने किया था उसकी फैमिली में से, दावा उस पर हो गया, बाद में साबित हो गया केस और उसको सजा मिल गई। अब ऐसी सूरत में अगर किसी बेगुनाह को सजा दे दी जाती है तो ये पूरे के पूरे हमारे सिस्टम पे एक धब्बे की सूरत में नुमा हो जाता है। इसीलिए रियासत की कोशिश होती है कि वो बेगुनाह को सजा देने के बजाय 100-150 गुनहगारों को खैर छोड़ दें।
لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کسی نے قتل کر لیا ہے تو وہ سال ڈیڑھ جیل میں گزارے اور اس کے بعد اس کو آپ چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سزا دلوانے کا کرائیٹیریا ہے وہ اتنا سخت ہے کہ اگر اس تمام تر کرائیٹیریا پہ آپ پورے اتر آتے ہیں, وہ تمام تر لوازمات آپ پورے کر لیتے ہیں, تو پھر سزا آپ کو دلوائی جائے گی اور اس کی بنیاد آپ خود رکھتے ہیں. پھر لوگ وکیلوں کو گالیاں دیتے ہیں, لوگ ججوں کو گالیاں دیتے ہیں, لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں کہ ملک میں سزائیں نہیں ہیں, عدالت ہے. کوئی کہتا ہے عدالت ایک بھوسے کی مانند ہے, وہ اٹھاؤ جیب میں ڈالو چلے جاؤ. کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, مختلف قسم کی آرا جو ہیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں لوگوں کی. لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے, یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ریاستی مشینری کو جو سٹارٹ کیا ہے وہ آپ نے کیا ہے, اور آپ نے سرے سے کیس کی بنیاد غلط رکھی. اگر آپ ایف آئی آر درج کرنے گئے ہیں تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ قتل ایک نے کیا ہوتا ہے, اس کے گھر کے تین بندے بھی ساتھ میں نومینیٹ کر دیتے ہیں, بے گناہ, آپ کا کیس کا بیڑا غرق وہیں پہ ہو جاتا ہے. چشم دید گواہ نہیں ڈالتے, ڈر کے گواہی نہیں دیتے کہ جی قسم اٹھانی پڑے گی, کیس کا بیڑا غرق وہاں پہ ہو جاتا ہے. پولیس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے, پشتوں کا علاقہ ہے, تج مج والی بات ہے, یہ ہے وہ ہے, نہ نہ نہ یہ وہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی غیرت سامنے آ جاتی ہے, کوآپریٹ نہیں کیا جاتا, میں اپنا بدلہ خود لوں گا, زبق پلخ پر بدلہ پلا خالا. اس میں بھی بہت ساری چیزیں خرابی کا سبب بن جاتی ہیں. تو جب آپ ایک دفعہ پولیس تھانے چلے گئے ہیں, آپ ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں, تو ایف آئی آر کو سوچ سمجھ کے درج کروائیں, کیونکہ آپ کے پورے کیس کی جو بنیاد ہے وہ اسی ایف آئی آر سے شروع ہوگی.

इसके अलावा जो हमारे पास दीवानी नौयत के बहुत सारे मुकदमात आते हैं, फैमिली केसेस को फिर अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो दीवानी नौयत के मुकदमात आते हैं उसमें एक और बहुत बड़ा मसला दरपेश होता है। मसला यह है कि लोग स्टैम्प पेपर पे जमीन खरीदते चले जाते हैं, आगे बेचते चले जाते हैं, असल मालिक जो है वो अपनी जगह कागजात में वैसे ही पड़ा होता है। हमारे टांग शहर में ऐसे बहुत सारे अभी मुकदमात दर्ज हो रहे हैं जिसमें जमीन अभी तक नवाब के नाम पे पड़ी हुई है, जो असल नवाब था टांग का। अब बहुत सारे लोग उठ के मुकदमात कर रहे हैं, उस जमीन को क्लेम कर रहे हैं, हालांकि वो जमीनें बिक चुकी हैं, नवाब साहब ने बेच दी होंगी, लोगों ने घर, और लोग 50-50, 40-40 साल से उन घरों में रह रहे हैं, लेकिन चूंकि लोगों के पास घरों के कागजात नहीं है। अब जब घरों के कागजात नहीं है लोगों के पास, तो उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान ये हो रहा है कि जब आपके पास घर का कागज ही नहीं है, आपके पास घर की कोई रजिस्ट्री नहीं है, आपने अपने नाम पे मुंतकिल नहीं किया, तो कल कल अदालत ये देखती है कि अच्छा ये तो उस बंदे के नाम पे पड़ा हुआ है जो असल मालिक था, तो अदालत जो है हो सकता है आपका दावा खारिज कर दे और उसको उसका घर वापस दिलवा दे, अगर वो ये साबित कर दे कि ये इसने बोगस तरीके से कब्जा किया हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि वक्ती तौर पर इंतकाल की फीस से बचने के लिए, वक्ती तौर पर रजिस्ट्री की फीस से बचने के लिए लोग क्या करते हैं भाई, लोग स्टाम्प पेपर पे घर खरीद लेते हैं, दुकान खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, इंतकाल की तरफ नहीं जाते, रजिस्ट्री की तरफ नहीं जाते कि फीस ज्यादा है। फीस को अगर चाहते हैं कि फीस कम हो तो आप खुद को फाइलर कर लें। फाइलर करना कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है, ना ही आपके लिए कोई उससे कोई नुकसान का सबब बनता है। आप खुद को फाइलर करें, फाइलर करने के बाद रजिस्ट्री इंतकाल करवाएं, थोड़ी सी फीस पे जमीन अपने नाम मुंतकिल करवाएं। इसमें एक और बहुत बड़ी तकलीफ होती है, आपने एक शख्स से जमीन खरीद ली, वो जमीन आपने स्टाम्प पेपर पर खरीद ली, कब्जा आपके पास है, आप इंतकाल नहीं कर रहे फीस से बचने के लिए। कल कला वो शख्स मर गया, वो जैसे मरेगा उसका विरासती इंतकाल होगा, जब विरासती इंतकाल होगा तो वो जमीन एक शख्स से तकरीबन 10-15 लोगों में तकसीम हो जाएगी कागजों में। अब जब आप इंतकाल करवाएंगे तो आप 10 लोगों से फिर इंतकाल करवाएंगे, और 10 लोग आपको मुख्तलिफ जगहों पर अंगूठे लगा के देंगे, आपके साथ कोई आएगा कोई नहीं आएगा मसले। तो ये दीवानी मुकदमों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन फल जाती हैं, बहुत सारी गलतियां जो है दीवानी मुकदमों को खराब करने में लोगों की अपनी होती हैं। लोग खुद इतना एहतियात नहीं बरतते, लोग खुद वहां पे जो है इस तरह के काम नहीं करते, कल कल फिर कानूनी पेचीदगियों का सामना होता है। क्योंकि अगर वो शख्स मर गया जिसके नाम पे जमीन है या घर है या रजिस्ट्री है और आपने अपने नाम पे मुंतकिल नहीं की हुई, तो घर की रजिस्ट्री करवाने के लिए आप अदालत से रुजू करेंगे, अदालत आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू करेगी, उसमें आपके तकरीबन 8 माह 9 माह 1 साल निकल जाएगा। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वो तमाम घर जो है रजिस्ट्री होगा उसके तमाम बच्चों के नाम पे, जब बच्चों के नाम पे हो गया, लेट से उसके 8 बेटे हैं, 7 बेटे हैं, 7 बेटों के नाम पे 5 बेटियां हैं, 5 बेटियों के नाम पे हिस्सा रजिस्ट्री हो जाएगा, उसमें 4 बेटियां शादी हैं, कोई कराची में बैठी हुई है, कोई जॉब में बैठी हुई है, कोई पराचिनार में बैठी हुई है, कोई वजीरिस्तान में बैठी हुई है, किसी बेटे की शादी है वो दुबई में होता है, कोई सऊदी अरब में होता है, कोई कतर में होता है, कोई टांक में होता है। अब आप इन सबको यकजा करें तो ये आपको जो वो आपने वहां पे 1-1.5 लाख रुपए बचाने के लिए उस वक्त रजिस्ट्री नहीं की होती, फिर बाद में आपको उसी रजिस्ट्री को करवाने के लिए उसके ट्रिपल पैसे लगवाने पड़ते हैं, 4 गुना 5 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए लग जाते हैं, और तकलीफ का सामना। एक एक को मिन्नत करोगे, उसमें एक भाई इनकार ही होगा कि भाई मेरे बाप ने तो ये घर बेचा ही नहीं था, फिर आप क्या करेंगे? कब्जा आपके पास हो भले ही, कागजों पे तो नहीं है। तो ये मुझे देखने और सुनने वालों से मेरी इस्तदा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी जमीन की लेन देन करें, घर खरीदें, जमीन खरीदें, दुकान खरीदें, तो सबसे पहला काम, या गाड़ी खरीदें, अक्सर लोग गाड़ी मोटरसाइकिल, मेरे अपनी मोटरसाइकिल मेरे पास है लेकिन वो लकी किसी बंदी के नाम, बंदे के नाम पे, अब मैं कहां उसको ढूंढता फिरूंगा कि लकी में वो कौन था, किसके नाम पे थी। तो ये सबसे पहला अमर जो आपने करना है, सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, कुछ भी खरीदने के बाद, घर खरीदा, जमीन खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदा, गाड़ी खरीदी, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने फिल फोर उसको अपने नाम पे मुंतकिल करना है। आपके नाम पे होगी तो आपको फायदा, आपके नाम नहीं होगी आपको नुकसान, और उस नुकसान का जो बड़ी बात है नुकसान की, वो क्या होगी
کہ آپ کی جو اونرشپ ہے وہ ڈسپیوٹ ہو جائے گی, ڈسپیوٹڈ ہو جائے گی, اس میں تنازع آ جائے گا, اور کر کلا جب آپ وہ چیز بیچنا چاہیں گے تو آپ کے لیے بہت سارے مسائل ہوں گے. ہوپ سو آپ کو میرے پروگرام میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی قانونی مسئلہ ہے, میرا رابطہ نمبر نوٹ کر لیں, 0300-8999852-0300-8999852, اس پہ کال کر کے آپ جو ہے میرے سے اپنے مسئلے مسائل پوچھ سکتے ہیں. باقی اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملاقات رہے گی آپ سے اگلی اتوار کو دن 12 سے 1 تک. خدا حافظ.

0: It's 1 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: तो हम तेरे हैं की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांकी नशरिया। हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू किश्ती भी तू साहिल भी तू। देख आकर कूचाए चाके गिरेबां में कभी, कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमिल भी तू।

0: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम। अमन का पैगाम। अमन का पैगाम।
1: यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
2: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
1: 88.4 FM।
3: It's 3 o'clock.
4: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
5: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
6: कभी मायूस मत होना।
7: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल आयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का असर।

Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91, Radio Pegram 97.4 and Radio Aman 88.4. जनाब तीनों रेडियो स्टेशन के ऊपर एक आवाज और ये आवाज है केसन की, केसन नेचुरल पाकिस्तान। जी जनाब केसन की आवाज सभी जानते हैं कि जनाब केसन की जो आवाज है वो खूबसूरती की आवाज है, वो सेहत की आवाज है और केसन की आवाज शिफा की आवाज है। तो जनाब तीनों रेडियो स्टेशन के ऊपर तमाम सुनने वाले गर्ल्स एंड बॉयज, अंकल एंड आंटी, चाचा एंड चाची, मामा एंड मामीज, दादा एंड दादी, नाना एंड नानी, सभी सुनने वालों को खलील ताबिश यमान के सलाम, ढेर सारी मोहब्बतें आप सभी के नाम, ढेर सारी नेक तमन्नाओं के साथ पेशे खिदमत है जनाब केसन नेचुरल पाकिस्तान का केसन टी टाइम शो। और जनाब इस टी टाइम शो के अंदर हम तमाम सुनने वालों को ढेर सारा वेलकम करते हैं, हजारों सैकड़ों की तादाद में तीनों रेडियो स्टेशन, तीनों डिस्ट्रिक्ट से जो हमारी आवाज को सुन रहे हैं, आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप अपने इलाके के अंदर केसन को सपोर्ट कर रहे हैं और केसन की प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। स्पेशली जैसे कि दो एरियाज तो हमारे पुराने एरियाज हैं जैसे कि डेरा इस्माइल खान या फिर पहाड़पुर, लेकिन न्यू एरिया हमने ओपन किया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले 15 दिन के अंदर ही हमें जो इसका रिस्पॉन्स, आज 17 तारीख है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी प्रोडक्ट को जो है उस इलाके के लोग, यानी कि मैं मुखातिब हूँ टांक वालों से, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पहले तो अल्लाह ताला का बेहद शुक्रिया कि जिसने, जिस जात ने आपके दिलों में केसन के लिए मोहब्बत पैदा की, आपके दिलों में केसन के लिए एतमाद पैदा किया, आपके दिलों में केसन के लिए भरोसा पैदा किया और आपके दिलों को मजबूत किया कि केसन के प्रोडक्ट को खरीदें, तो अल्लाह ताला के ढेर सारे शुक्र के बाद आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि जिस तरीके से आप लोग हमारे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और टांग के तमाम बड़े स्टोरों के ऊपर जनाब एक आवाज है, एक आवाज है जो अब गूंज रही है और वो है केसन की आवाज, केसन हेयर ऑयल की आवाज, केसन शैम्पू की आवाज, केसन शिफा दर्द की आवाज, केसन ग्लूटावाइट क्रीम की आवाज, केसन जाफरानी सोप की आवाज, केसन हाजमा कंट्रोल सिरप की आवाज और केसन वेट कम पेट कम के साथ साथ केसन गो पिंपल फेस वॉश की आवाज और केसन प्योर वाइटनिंग लवली फेस वॉश की आवाज। जनाब इतनी ढेर सारी प्रोडक्ट केसन के पास है क्योंकि जनाब हमारा ये आप लोगों के लिए स्लोगन है कि प्यारा लगना तो आप सब लोगों का हक है और प्यारा लगने के लिए जनाब बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है और ये स्लोगन आप ऐसे नहीं लगा सकते जब तक कि आपके पास आपको प्यारा बनाने का सारा कुछ मौजूद नहीं है। तो जनाब सर के बालों से लेकर पांव तक जो है हम आप लोगों के लिए ट्रीटमेंट्स रखते हैं, कुछ उसमें जो है आप लोगों के बालों की ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास हेयर ऑयल और शैम्पू की सूरत में और वो भी प्रीमियम किस्म के हमारे प्रोडक्ट्स। और मैं टांक वाले से मुखातिब हूँ और हमारे प्रोडक्ट्स आप लोग खरीद रहे होंगे तो हमारी पैकेजिंग डेफिनेटली आप लोगों को मुतासर कर रही होगी कि इस जैसी प्रीमियम किस्म की पैकेजिंग जो है शायद आपने कभी किसी प्रोडक्ट की देखी हो। जैसे कि आप केसन नेचुरल पाकिस्तान की पैकेजिंग को देख रहे होंगे, सबसे पहला जो इम्प्रेशन होता है किसी भी कंपनी का वो उसकी पैकेजिंग होती है। और जब हम फार्मा में होते थे, मेडिसिन फील्ड के अंदर होते थे और जब हमारे सेमिनार होते थे और जब हमारी ट्रेनिंग होती थी तो हमें कहा जाता था कि 70% जो आपकी सेल है ना, 70% जो सेल है वो आपकी जो आपकी पर्सनैलिटी है ना उससे होती है। यानी कि किसी भी बंदे को आप इम्प्रेस जो पहली नजर में करते हैं ना वो आपकी ड्रेसिंग होती है, आपकी ड्रेसिंग सेंस है, आपकी आउटर पैकेजिंग है कि पैकेजिंग क्या होती है। तो जनाब ये इम्प्रेशन होता है किसी भी प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट को आप बाद में इस्तेमाल करते हैं लेकिन प्रायोरिटी के ऊपर उसकी पैकेजिंग होती है। तो हमारे इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है सोच विचार होती है कि जो प्रोडक्ट हम आप लोगों को दें वो यूनिक होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग प्रीमियम किस्म की होनी चाहिए ताकि आप तक जो चीज पहुंचे ठीक है जनाब वो सेफ रहे। जैसे कि टांग का इलाका है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आप लोगों को जो हमारे फेस वॉश मिलेंगे जनाब वो डबल लेयर के साथ हैं, यानी कि उनको हीट भी जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। डबल लेयर की क्वालिटी के ट्यूब्स के साथ जो है फेस वॉश मौजूद है और जब इतनी प्रीमियम किस्म की पैकेजिंग और जब फिर उसको आप पैक को आप खोलते हैं
और फिर उसके अंदर का मटेरियल यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग मुतासर हुए बगैर नहीं रह पाते, क्योंकि जनाब केसन जो नाम है वो एतमाद का तो है ही। ठीक है जनाब, एतमाद हुआ तभी जाके आपने केसन के प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन साथ साथ में जैसे ही आप हमारी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते जाएंगे तो इसके इनकी जो रिजल्ट हैं वो आपके सामने आते जाएंगे। बहुत शुक्रिया जो लोग बहुत तेजी के साथ जनाब टांग के अंदर जो है हमारा शिफाए दर्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग वेट कम पेट कम, यानी कि ये हमारी दो पहली प्रोडक्ट हैं, वेट कम पेट कम और शिफाए दर्द के, जिसका आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें रिपीट ऑर्डर भेजा। ठीक है जनाब, रिपीट ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि पहला भेजा गया आपका सारा का सारा जो ऑर्डर है स्टॉक है वो कंज्यूम हो गया है। तो बेहद शुक्रिया जिस तरीके से हमने आप लोगों को पैगाम पहुंचाया कि दर्द बहुत बड़ा मसला होता है, और दर्द के लिए जब आप एक प्रॉपर चीज जो है इस्तेमाल करते हैं ना, सिर्फ ये नहीं कि वक्ती तौर पर आपका दर्द खत्म हो, बल्कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आपके पट्ठों के ऊपर काम करे। ठीक है जनाब, जिसका मोड ऑफ एक्शन जो है, किसी भी चीज का मोड ऑफ एक्शन होता है, ठीक है जनाब, वो किस तरीके से उसने काम करना होता है। जैसे आप टेबलेट खाते हैं उसी तरीके से टॉपिकली आप जब कोई चीज अप्लाई करते हैं तो उसका भी मोड ऑफ एक्शन होता है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो डेफिनेटली जो आपके सिस्टम के अंदर जो दिमाग को मैसेजेस पहुंचते हैं दर्द के, ना सिर्फ उनको ब्लॉक करना होता है, ठीक है जनाब, ब्लॉक करने के साथ साथ वहां पर आपके पट्ठों के ऊपर काम करना है, डीप पेनिट्रेट होकर ये शिफाए दर्द जो कि ऑस्ट्रिच ऑयल है, शुतुरमुर्ग का तेल है, डीप पेनिट्रेट करता है जनाब, डीपली आपकी स्किन के अंदर चला जाता है, जिस्म के अंदर जाकर आपके पट्ठों को मजबूत करने का काम करता है। केसन शिफाए दर्द के लिए बेहद शुक्रिया जो आप ट्रस्ट कर रहे हैं, वेट कम पेट कम भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और जनाब आज जो है आप टांग के लोगों से मुखातिब हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर, आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे ये कहा है कि भाई आपकी इतनी प्यारी पैकेजिंग, इतनी प्यारी एक क्रीम जो हमारे पास मौजूद है, उसका नाम हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम है। ठीक है जनाब, शायद वो आप लोगों को नहीं बता रहे, तो मेरे ख्याल में मैंने एक दो दफा आप लोगों को बताया, तो आपको एक दफा फिर से बताते चलें कि केसन की जो है चार तरह की क्रीमें हैं। केसन नेचुरल पाकिस्तान के पास जो ब्यूटी क्रीम्स हैं वो चार किस्म की हैं। ठीक है जनाब, एक जाफरानी फार्मूला जिसे हम नाइट क्रीम कहते हैं वो भी ब्यूटी क्रीम है, दूसरी हमारी ग्लूटा वाइट वो भी ब्यूटी क्रीम है, ठीक है जनाब, तीसरी हमारी हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम ये भी ब्यूटी क्रीम है, और चौथी हमारी केसन क्रैक रिलीफ क्रीम ये भी बेसिकली ब्यूटी क्रीम है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ फटी हुई एड़ियों के ऊपर होता है। आपके पाँव फटे हुए हैं, आपके हाथ फटे हुए हैं, हाथ और पाँव जहाँ जिस्म का कोई भी हिस्सा जो फटा हुआ है आपका, उसके ऊपर केसन क्रैक रिलीफ इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है जनाब, बच्चों को पैम्पर्स के रैशेज हो गए हैं आप उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये मदर और बेबी के लिए बहुत प्यारी प्रोडक्ट है, माँ और बच्चे दोनों के लिए ये जो हमारी प्रोडक्ट है केसन क्रैक रिलीफ क्रीम, यानी कि मदर क्यों इस्तेमाल करेगी, मदर इस्तेमाल करेंगी जनाब, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर किसी घर के अंदर जो मर्द है वो खेती बाड़ी अगर करता है, ठीक है जनाब, जैसे कि पहाड़पुर के एरिया में मुझे सुना जा रहा होगा या टांग के एरिया में मुझे सुना जा रहा होगा, तो बहुत सारे मर्द जो है खेती बाड़ी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जनाब हाथ बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं, ठीक है जनाब, छाले पड़ जाते हैं और फिर छाले फट जाते हैं और फिर हाथ जख्मी हो जाते हैं। तो ये जो हमारी चौथी क्रीम है जिसको हम कहते हैं केसन क्रैक रिलीफ क्रीम, बहुत ही प्यारा फार्मूला है जनाब, और कुछ लोगों ने हमें ये कहा है कि भाई आपने तो कहा है कि ये जो क्रैक रिलीफ क्रीम है ये फटी एड़ियों के लिए है, लेकिन ये तो जब हम इसे एड़ियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारे तो पाँव व्हाइट हो जाते हैं। सो बेसिकली ये जो फार्मूला है क्रैक क्रीम का, शिया बटर तो डेफिनेटली इसके अंदर है जो कि मॉइस्चराइजेशन देता है, कोकोनट ऑयल इसके अंदर है, ठीक है जनाब, सरसों के तेल की बड़ी अहमियत है फटी हुई एड़ियों को ठीक करने के लिए, तो वो भी इसके अंदर है, पेट्रोलियम जेली भी है, शिया बटर भी इसके अंदर मौजूद है, और साथ में जो है इसके अंदर विटामिन B3 और सैलिसिलिक एसिड है। ये कम कीमत प्राइस में हमारी चीज मौजूद है, लेकिन है बहुत ही कीमती, यह है बहुत ही कीमती, इसके इस्तेमाल बहुत ही जबरदस्त है, ये जख्मों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जख्म हो गया कहीं पर तो आप इस क्रैक रिलीफ क्रीम, ये घर में आपके होनी चाहिए भाई, ठीक है जनाब, क्योंकि जनाब औरतों की एड़ियां तो साल के 12 महीने फटती हैं, और ये एड़ियों के फटने का जो मकसद मसला होता है ना, ये सिर्फ सर्दियों में नहीं होता भाई, ठीक है जनाब, ये जो एड़ियां फट जाती हैं, आप ये मत समझें कि एड़ियां तब फटते हैं जब सर्दियां आती हैं, ऐसा नहीं होता जनाब, सर्दियों में नो डाउट इनकी रेशो बढ़ जाती है, लेकिन वो खवातीन
जो अक्सर जो है खड़े होके किचन का काम करती हैं। ठीक है जनाब, वो खवातीन जो खाना पकाना, जैसे कि आजकल किचन का रिवाज है कि खड़े होकर आपने जो है चीजें बनानी होती हैं, तो उन खवातीन के पाँव बहुत ज्यादा खराब होते हैं, उनकी एड़ियां बहुत ज्यादा फटी होती हैं, जो अपनी एड़ियों के ऊपर जिनके पूरे जिस्म का वजन आता है। ठीक है जनाब, तो ये हमारी प्रोडक्ट जो है फटी हुई एड़ियों के लिए है। किसी को चंबल है, यहाँ पर एक हमारे दोस्त हैं जानने वाले, वो हमारा हेयर ड्रेसर है बेसिकली, अगर कोई कंफर्म करना चाहे तो मैं उस हेयर ड्रेसर का नाम बताता हूँ, न्यू बनू चुंगी के ऊपर जो है अमानुल्ला, सॉरी सनाउल्ला हेयर ड्रेसर है, सनाउल्ला हेयर ड्रेसर, ये बलोच करियाना के बिल्कुल साथ ही बैठा हुआ है। तो उनको हम जो है वो हमारा ऑयल शैम्पू फेस वॉश ये बहुत ज्यादा खरीदते हैं, कस्टमर को देते हैं, अपने यूज में भी उधर रखते हैं। तो उनके हाथ बड़े खराब थे, एक दिन हम विजिट के लिए गए हुए थे तो मैंने उनके हाथ देखे, तो हाथ ऐसे दराड़े थी उनके हाथ के अंदर और जख्म बने हुए थे। तो मैंने जब उनको कहा, चूंकि ये उनके इस्तेमाल की चीज नहीं है, तो मैंने उनको कहा कि भाई हमारी क्रीम है क्रैक रिलीफ क्रीम, वो मैं आपको भिजवाऊंगा, आप अपने हाथों के ऊपर उसको इस्तेमाल करना। तो उसने जब मैं नहीं बल्कि मुझे लड़के ने फिर 2 हफ्तों बाद कहा कि सर उसके हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गए। वो कह रहा था यार मैं तो दम करवा रहा था और मुझे किसी ने कहा था कि दम करवाओगे तो ये आपके हाथ चंबल टाइप इस तरह के कोई, इसको बीमारी खारिश भी होती थी और बहुत ज्यादा हाथ उसके फट गए थे। आप जाकर ना उससे डेरा के जो लोग हैं आप उससे जाके पता भी कर सकते हैं, उसके हाथ बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और वो कहते यार ये तो कमाल हो गया, मैं तो इतने अरसे से दम करवा रहा था, मुझे किसी ने कहा कि आप दम करवाओ ये दम से ठीक होगा, और आपने ये एक क्रीम मुझे दी और 200 रुपए की क्रीम है, क्योंकि हमारे कस्टमर है तो उनको हमने ऐसे गिफ्ट की थी। आप यकीन कीजिए कि उसके फटे हुए हाथ, जो हाथ चीरे हुए थे यूं समझ ले, ठीक है जनाब, इस तरीके के वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बेसिकली जख्म को ठीक करने वाली क्रीम है हमारी क्रैक क्रीम। जब आपके पाँव फट जाते हैं और पाँव के अंदर से खून निकलने लगता है, इतनी सिवियर किस्म की जब आपको क्रैक्स आ जाती हैं, ठीक है जनाब, ड्राइनेस की वजह से, बहुत ज्यादा वजन की वजह से, तो आप लगाएंगे तो आप यकीन कीजिए कि 2 रातें आप सिर्फ इसको लगाएं और फिर इसका रिजल्ट देखें। केसन क्रैक रिलीफ क्रीम, इसका नाम है क्रैक रिलीफ क्रीम, सब्ज रंग का बहुत ही प्यारा सा डब्बा है, ठीक है जनाब, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सबसे सस्ती क्रैक क्रीम जो है ना वो केसन की है। क्रैक रिलीफ क्रीम जो है, अगर आप अपने फटी हुई एड़ियों के लिए खरीदते हैं, या फिर आप जो है बच्चों के रैशेस के लिए खरीदते हैं, या घर में कोई मर्द है तो उसके हाथ बहुत ज्यादा सख्त हैं तो उसके लिए खरीदते हैं, तो या अगर कोई जख्म हो जाता है, जैसे हाथ पांव जल जाता है, कभी आपका जख्म हो जाए, ठीक है जनाब, इन्फ्लेमेशन हो जाए वहां पर, तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो फौरन वो जख्म भी ठीक हो जाएगा। तो मैं क्रीम्स की बात कर रहा था भाई, 4 किस्म की हमारी क्रीम्स हैं, ठीक है जनाब, उसमें 2 क्रीमें चेहरे पे लगाने वाली हैं, एक केसन नाइट क्रीम जनाब जो कि जाफरानी फार्मूला क्रीम है, 320 रुपए की है, दूसरी हमारी क्रीम केसन ग्लूटा वाइट क्रीम है, ये डे एंड नाइट है, ठीक है जनाब, आप इसे रात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए सनब्लॉक भी इसको आप यूज कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर भी है, बहुत जबरदस्त किस्म का काम करती है। तीसरी क्रीम जो हमारी है वो हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम है, ठीक है जनाब, हाथ और पाओं को गोरा करने वाली ये क्रीम है, और बहुत ही फेमस किस्म का हमारा फॉर्मूला है। आप यकीन कीजिए कि बहुत सारे लोग इसका रैपर उतार कर अपने नाम से इसको 600-600 की बेचते हैं, ठीक है जनाब, 500-500 की बेचते हैं। तो आपके शहर टांग के अंदर भी हमारी भाई ये प्रोडक्ट मौजूद है, हाथ और पाओं को गोरा करने वाली ये क्रीम है, ठीक है जनाब, और जब गर्मी है तो अगर आपके हाथ हीट में या सूर्य के सामने होंगे तो बहुत ज्यादा काले भी हो रहे होंगे, तो भाई जरूर खरीदिए। जब आप फेस क्रीम खरीदते हैं तो उसके साथ कोशिश किया कीजिए कि ये जोड़ी खरीदा करें, ठीक है जनाब, वैसे तो जोड़ी हमारे हेयर ऑयल और शैम्पू की है, लेकिन ये जोड़ी भी खरीदा करें जरूर, ठीक है जनाब, हैंड एंड फुट और साथ में जो है फेस क्रीम, इसमें चाहे तो आप ग्लूटा खरीद सकते हैं, चाहे तो आप जाफरानी क्रीम खरीद सकते हैं, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, और जो क्रीम आपको ज्यादा सूट करती है डेफिनेटली उसे आपने गो थ्रू करना है, उसी को आपने कंटिन्यू करना है। इसके अलावा जो है ये तीसरी क्रीम जो हमारी है, ये जनाब हाथ और पाओं को गोरा करने वाली क्रीम है, हैंड एंड फुट क्रीम है, और चौथी जो हमारी क्रीम है वो है क्रैक रिलीफ क्रीम जो कि फटी हुई एड़ियों के लिए है।

0: जी जनाब, अपने स्किन की बेहतरी के लिए, हाथ पाओं को गोरा करने के लिए जनाब, अपने जो है क्रैक्स को, एड़ियों को खत्म करने के लिए, आप केसन के कंपनी के ऊपर जब आप आ चुके हैं तो भाई सब कुछ आपको मिलेगा केसन के पास। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको चाहिए हो और वो केसन के पास ना हो, जो जरूरी भी हो, जरूरी नहीं होता। हम वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं कि जो आपके लिए जरूरी भी है और उसके अंदर आपको कोई नुकसान भी ना पहुंचे। अमेरिकन बहुत सारे लोग जो है वो ज़हनी कोफ्त में मुबतला होते हैं और ज़हनी सुकून के मुतलाशी होते हैं कि उनको ज़हनी सुकून कब मिलेगा। लेकिन अगर वो गौर करें, कभी मुझे इस वक्त जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं, जितने मेल फीमेल सुन रहे हैं, अगर वो इस स्टेज से गुजर रहे हैं कि उनको डिप्रेशन है, ज़हनी सुकून नहीं है और वो सुकून चाहते हैं, तो वो ऐसा क्या करें कि वो सुकून की लाइफ में आ जाए। बेसिकली इंसान डिप्रेशन में उस वक्त जाता है, सुकून आपका उस वक्त ख़त्म होता है जब आप हर किसी को और हर बात के ऊपर, हर मौके के ऊपर रद्द अमल देना ज़रूरी समझते हैं। वही बंदा डिप्रेशन में जाएगा। अगर आप अपनी आदतों को देखेंगे तो आप जब उस कॉज के ऊपर जाएंगे, उस रीज़न के ऊपर जब आप जाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि वाकई यार मेरी जो डिप्रेशन है, जो परेशानी है, वो तो मैंने खुद ही क्रिएट की हुई है। मुझे क्या ज़रूरत थी इस मामले में बात करने की, या मुझे क्या ज़रूरत थी इस बात के ऊपर अपना रद्द अमल देने की, अपना रिएक्शन दिखाने की, या ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि मैं इसके ऊपर इतना परेशान हूँ, या ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि जिसको मैंने इतनी अहमियत देना शुरू कर दी है। ज़िंदगी में वही लोग खुश रहते हैं, वही लोग सुकून में रहते हैं जो इन नेगेटिव बिहेवियर्स को इग्नोर करते हैं। नज़रअंदाज करना जो है ये बहुत बड़ा हुनर है, ये नज़रअंदाज करना जो है बहुत बड़ा हुनर है, और ये बहुत कम लोगों को आता है। और हमारी परेशानियों की, हमारे डिप्रेशन की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो यही होता है कि हम हर किसी को हर मौके के ऊपर रद्द अमल देना ज़रूरी समझते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट करना ज़रूरी समझते हैं। अगर आपने छोटी छोटी बातों को रिएक्ट करना छोड़ दिया, उनके ऊपर रद्द अमल देना आपने छोड़ दिया, तो यकीन कीजिए आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियाँ, आपकी आधी से ज़्यादा टेंशन जो है वो उसी दिन ख़त्म हो जाएंगी जब आप दूसरे मामलात के अंदर, या जो आपके नहीं हैं और आप उन मामलात के अंदर भी आपने खुद को घसीटा हुआ है, ये तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तक कि आपके साथ भी अगर कोई इस तरह का नेगेटिव रवैया इख्तियार किया जाता है, तो भाई कुछ जहाँ तक हो सकता है आप उसको इग्नोर करें। जितना इग्नोर करेंगे उतना ज़्यादा आप पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन आप ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिर्फ खूबसूरती काफ़ी नहीं होती है, सिर्फ जो है सुकून काफ़ी नहीं होता है। अगर सुकून है और आपकी ज़िंदगी के अंदर खूबसूरती की कमी है, तो डेफिनेटली आप उसे भी पाना पसंद करेंगे। बेसिकली उस दिन मैं आपको बता रहा था कि इंसान जो है फितरतन उदासी है। आप इसके पास 10 चीज़ें आ जाएं तो हमेशा ये 11वीं चीज़ का मतलाशी रहेगा कि 11वीं चीज़ मुझे कब मिलेगी। लेकिन सब्र और शुक्र, सब्र बेसिकली इग्नोर करना जो है सब्र ही है, ठीक है जनाब, जिसको हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं इग्नोर करना, बेसिकली इसका मतलब ही सब्र करना होता है। तो जनाब इस छोटे से पैगाम को भी अपने माइंड के अंदर रखिए कि जहाँ पर आप हमारे खूबसूरती के पैगाम को अपने माइंड के अंदर रखते हैं, वहीं पर इस पैगाम को भी कि हर छोटी छोटी बात के ऊपर रिएक्ट करना, रद्द अमल करना और छोटी छोटी मामलात को जो है सीरियस लेना छोड़ेंगे, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी के अंदर ढेर सारा सुकून आएगा। मुझे कहते हैं खलील ताबे शवान, और हमारा जो कॉलिंग नंबर है, जो SMS नंबर है, वो दो नंबर हैं जनाब। और अक्सर लोग कहते हैं कि आप बहुत जल्दी में बता जाते हैं, थोड़ा सा ऐसी बताया आहिस्ता ऐसा बताया करें, तो भाई 0344-936-3366, 0344-936-3366, ये हमारा टेलीनॉर का नंबर है जिसके ऊपर आप कॉल और SMS कर सकते हैं। और दूसरा हमारा नंबर जोंग का है जनाब, 0313-798-4554, ठीक है जनाब, 0313 798-45-44 इसके ऊपर भी आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आपके पास हमारे प्रोडक्ट्स के हवाले से, अवेलेबिलिटी का मसला हो तो जरूर हमें बताइएगा। अच्छा जी, एक मिस्टेक और टांग के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से ये हुई है कि हमने कहा था कि जो लोग बिस्मिला पैकेज ले रहे हैं ना, ठीक है जी, वो अपना नाम एड्रेस जरूर वहां पर लिखवाएं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ताकि हम इसमें कुरंदाजी करेंगे और तीन लोगों को फर्दर भी हम इनामात देंगे। ठीक है जनाब, तो लोगों ने नहीं लिखवाया और डिस्ट्रीब्यूटर ने भी नहीं लिए। ठीक है जनाब, तो ये हमें मसला आ रहा है कि लोग पैकेज तो वहां से ले रहे हैं लेकिन उनके पास डेटा मौजूद नहीं है कुरंदाजी में आपको डालने के लिए। तो वो काइंडली भाई जितने लोग बिस्मिल्ला पैकेज ले चुके हैं ना मंसूर जनरल स्टोर से, अगर वो चाहते हैं कि उनका नाम कुरंदाजी में भी है तो वो जरूर वहां पर जाकर अपना नाम और अपना एड्रेस या फोन नंबर कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी है जाके लिखवा दें, ताकि आप लोगों का नाम कुरंदाजी में आ सके। ठीक है जनाब, और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब फर्स्ट कॉलर है और देखते हैं कौन कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम सलाम, खलील भाई कैसे हो?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ?
1: आड़ा रोड से बात कर रहा हूँ।
0: आड़ा रोड से तोकीर बात कर रहे हैं? आड़ा रोड में तो मेरा एक ही लिसनर है तोकीर।
1: जी जी, हम तो इंशाल्लाह आए ना।
0: तोकीर हसन, कैसे हैं तोकीर? ठीक है आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: एक्टिव लिसनर तोकीर है, लेकिन हमारे वहाँ पर साइलेंट लिसनर बहुत सारे हैं जो खान कॉस्मेटिक से ना प्रोडक्ट हमारे खरीदते रहते हैं। तो एक्टिव जो है, जो जिनके पास हमारा नंबर भी है, जो रابطہ भी करते हैं, जो एफएम भी सुनते हैं, वो तोकीर भाई हैं। तो तोकीर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत दिनों बाद याद किया आपने हमें।
1: कोशिश करते हैं, कॉल नहीं मिलती
0: जी। अच्छा जी, कॉल नहीं मिलती आजकल। असल में तीन स्टेशन इकट्ठे हो गए हैं ना, डेरा वाले भी कोशिश करते हैं, टांग वाले भी और पहाड़पुर वाले भी, तो बाजू का रश लग जाता है जिसकी वजह से कॉल का जो है मसला हो जाता है कभी कभी।
1: नहीं लगती।
0: हाँ बिल्कुल। तो जनाब आज हम जिक्र कर रहे हैं कि भाई केसन के पास ना चार किस्म की क्रीमें, आपको इनके नाम आते हैं वैसे केसन की चार क्रीमों?
1: नहीं सर, मुझे, मैं तो ग्लोटामाइन और पहले ब्यूटी क्रीम जो थी ना ये इस्तेमाल करता था, वो दूसरे कभी इस्तेमाल भी नहीं, नाम भी सही पता नहीं है क्या ऐसे यूज नहीं।
0: अच्छा, यानी कि आपको हमारी दो क्रीमों के नाम आते हैं, एक नाइट क्रीम जो जफरानी है और दूसरी हमारी ग्लूटामाइन क्रीम। हाथ पांव वाली क्रीम आपने कभी इस्तेमाल नहीं की? हैंड एंड फुट वाली? हैंड एंड फीट वाली कभी?
1: मैंने इस्तेमाल नहीं किया।
0: अच्छा, और दूसरी जो फटे हुए पाँव को ठीक, पाँव हाथ आपके ठीक होते हैं, सख्त नहीं होते कभी?
1: नहीं नहीं सर जी, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है।
0: अच्छा चलो ठीक है, बस फिर वो दोनों क्रीमें आपके काम की नहीं है ना? जी
1: मेरे काम की नहीं है
0: वो। नहीं, चलो ठीक है, चार क्रीमों में से आप हमारी दो क्रीमों को जानते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि केसन की चार क्रीमें और दो को आप जानते हैं।
1: जो जानते नहीं, दोनों इस्तेमाल भी करते हैं।
0: दोनों इस्तेमाल भी करते हैं, तो दोनों क्रीमों से आप खुश हैं, खुशहाल हैं, खूबसूरत हैं, प्यारे हैं?
1: तो मिर्ची सोप भी इस्तेमाल करते हैं।
0: अच्छा जी, तो मैं तोकीर मुझे एक बात बताएं, इस वक्त आपको आपको पश्तो आती है वैसे कि नहीं आती पश्तो?
1: नहीं सर जी, मुझे पश्तो नहीं आती, दोस्त सारे पठान है लेकिन वो सर की सीख गए, हमें पश्तो नहीं आती।
0: यही हमारे साथ भी सीन है, हमारे साथ रहने वाले पठान जो है वो सराय की सीखे हैं लेकिन हम पश्तो नहीं सीख पाए।
1: जी जी, वो तो सलीम नहीं था, प्रिंस सलीम।
0: हाँ हाँ,
1: वो मेरा बचपन से दोस्त है, हम साथ में बैठते उठते हर वक्त एक दूसरे के साथ, वो सीख गया है, हमें पश्तो नहीं आता।
0: असल में हमने कोशिश नहीं की ना, आपको आप थोड़ा गौर करें ना, आपने कोशिश नहीं, असल बात कोशिश की होती है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो वो मैंने भी कोशिश कभी नहीं की वरना सीख जाते।
1: जो वो आपस में बात करते ना मुझे समझ आ जाती है लेकिन मैं बात कर नहीं सकता,
0: कर नहीं सकता। तो क्या कहेंगे जनाब, इस वक्त टांक डेरा और पहाड़पुर के लोग सुन रहे हैं, आप क्या कहेंगे? क्रीमें तो मार्केट में बहुत हैं लेकिन आप क्या समझते हैं केसन की ग्लूटामाइन क्रीम कितनी अच्छी है?
1: बिल्कुल, इस्तेमाल कर दे एक बार, कर ले फिर आपको पता चल जाएगा, आप खुद खरीदेंगे, हमें कहने का मौका नहीं देंगे।
0: ये सिर्फ एक पैसा

0: लव ये सुन।
1: जुल्फ की सच्ची मोहब्बत हर जुल्फ का पहला प्यार।
0: जनाब हर जुल्फ का पहला प्यार और एफएम की दुनिया का पहला प्यार जो है चाचा फतेह खान है। सलाम अलैकुम। हैं जी पहाड़पुर ते भी है सही। पहाड़पुर ते भी है तुसा पहाड़पुर पहाड़पुर चेक करो ना पहाड़पुर आंदा पियो सी पहाड़पुर एफएम बंद पी है लिंक कोनी है सही सही तुसा एडे अरसे बाद इतनी वडी कोई बेवफाई भी करेंदा होना पहले मैं कोई दसो चाचा फतेह खान आवाज हूं नहीं आंदी पी पहाड़पुर को चेक करो भूल
2: गया
0: चार को ठीक है जी जरूर जी जरूर बहुत मेहरबानी ओके जी चाचा फतेह खान हमारे साथ सुन रहे होते पंजाब साइड से बहुत अरसा बाद आज हमारे साथ है जी पहली मोहब्बत कौन होता है वैसे

0: ये जनाब आपकी जुल्फ का पहला प्यार है किशन जोड़ी, क्योंकि जनाब जब भी आप थोड़े से बड़े होते हैं जनाब, तो आपको जो फिक्र लगती है ना, वो चेहरे से ज्यादा क्रीमें तो आप लगाना शुरू करते हैं जनाब 18-20 साल की उम्र में, लेकिन आपकी खूबसूरती का जो पहला प्यार होता है ना, वो हेयर ऑयल और शैम्पू होता है। लेकिन कहाँ कहाँ से बातें भाई जोड़ के लाते हैं हम आप लोगों के लिए। शब्बीर उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, और उनको मौका देंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील भाई, क्या हाल है? खैरियत से?
0: जी अल्लाह का शुक्र है। और हम कह रहे हैं कि भाई केसन जो है ना, वो आपकी जुल्फों की पहली मोहब्बत है। चेहरे का तो हम बहुत देर के बाद भी सोचते हैं, लेकिन सबसे पहली जो मोहब्बत होती है वो आयल होता है, ऐसा है कि नहीं है?
1: बिल्कुल, क्योंकि जो है ना, ये ऐसी बात है कि खाली शैम्पू के साथ जो है ना, सर को धोना और उसके ऊपर तेल ना लगाना, और तेल किस्म किस्म के हैं, लेकिन वो भी जो है ना केसन का ऑयल ना लगाना, तो ये उसके अपनी गालों के लिए और अपनी खूबसूरती के लिए एक ज्यादती है। ये लाजमी मलजूम है, क्योंकि ये घने करता है और स्याह बनाता है और खुशबूदार है, क्योंकि जिसके पास जब ये केसन का शैम्पू लगाकर और ऑयल लगाकर जब इंसान कदमी या दोस्ती में या इधर उधर गली में या मस्जिद में आता जाता है, तो पहले वो पूछते हैं कि क्या परफ्यूम लगाया, तो इसकी खुशबू परफ्यूम की तरह है।
0: हाँ बिल्कुल, वो तो खैर है इसकी, लेकिन असल में आपके बालों के अंदर जान डालने वाला फार्मूला भाई हमने बनाया है जो किसी के पास नहीं है। 17 अज़ा से बना हुआ तेल आज तक किसी कंपनी ने नहीं बनाया, सबने 8-10 वाले बनाए हैं। तो भाई मेरे ख्याल में कि अब तो यही बनता है कि हर किसी की पहली चॉइस यही ऑयल होना चाहिए बालों की नशोनुमा के लिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि इंसान अल्लाह पाक ने ये खूबसूरती के लिए एक नियमत है, उनसे पूछे जिसके बाल नहीं है, क्योंकि क्या जिसने हिफाजत नहीं की है। बाल तो पहले बचपन ही से होते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम या तो टेंशन होती है उसके बाद, या खराब पानी, गंदा पानी सही नहीं होता, या ये जो है ना हमारा विटामिन

0: ये कमजोरियां होती है, खुराक सही नहीं होती, लेकिन हम उससे जो है ना इसको दरगुजर कर देते हैं कि चलो खैर चाहे जिस साबुन से भी धो लें, जिस शैम्पू से धो लें, लेकिन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता गिरते गिरते उसका ख्याल नहीं रखते, फिर पता चलता है कि वो इसकी हिफाजत करें क्योंकि आज गंदे हो गए हैं। आज अगर कैसन का एक पांच साल छह साल अगर पहले जो निकलता तो लोग बहुत से इस जो है ना इस मेन प्रॉब्लम से जो है ना बच जाते, क्योंकि ये इन्होंने आकर जो है ना ये मामला जो है गिरने का और इसका जो है ना प्रॉब्लम इंसानों का जो नौजवानों का रोक लिया है। तो मैं उनको सलाम करता हूँ, जितने भी मेरे भाई हैं, बहनें हैं, भतीजियां हैं और जितने यंगस्टर हैं, मैं उनको ये अपील करूंगा कि इन्हें कैसन की ये जोड़ी कैसन शैम्पू और जो है ना ये ऑयल ये बहुत ही मुफीद है बालों के लिए, और आइंदा जो है ना अपनी जितनी भी उम्र है बाकी इसकी खूबसूरती को मजबूत करता है, जरूर इस्तेमाल करें। जो गंजे हो गए तो थोड़े बहुत अगर कुछ बचा है तो फिर भी उसको रोक सकता है, उसकी चमक को देता है, उसके बच्चे और बाल भी उगाता है जो उसके
1: बिल्कुल न्यू ग्रोथ होती है इस साल।
0: बिल्कुल, तो मैं ये कहूँगा कि बालों की इसकी हिफाजत करो, क्योंकि इंसान बालों के सिवा इंसान जो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और इन बालों की वजह से खूबसूरती होती है। और बाकी जो है जितनी भी आपकी क्रीम है, जिन भी आज भी आपने शुक्र है क्या जो है ना ये आगाह कर दिया कि क्रैक रिलीव क्रीम का जो है ना आपने ज्यादा किया, इसका नाम भी नहीं लिया, आज मुझे बहुत खुशी हुई है। ये एक सर्दियों का मसला नहीं है, इनका एरियों का ये हमारे यहाँ, मैं बता देता हूँ इंशाल्लाह मेरे साथ ये एग्री करेंगे जितने भी मेरे लिसनर हैं, ये गर्मियों में अक्सर किसी की एरियो में जो है ना ये फूटें जो है ना सर्दियों की वजह से निकलती है, किसी की मेदे की वजह से, क्योंकि हाजमा का ड्रग इस्तेमाल करें तो वो न करने से मेदे में प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से भी जाएगी। गर्मियों के अक्सर मैंने लोगों को देखा है काम करने के बावजूद भी उसकी जो है फूटें गर्मी में ज्यादा दरारे हो जाती है, तो मैं कहता हूँ की ये गर्मियों में भी मुफीद है। तो बाकी तमाम सुनने वालों को
1: बहुत शुक्रिया जनाब।

0: आप केसन जोड़ी आपके बालों का पहला प्यार अगर नहीं है तो बना लीजिए इसको अपना पहला प्यार, क्योंकि जनाब यही आपके बालों की सही केयर करने वाली जोड़ी है, केसन ऑयल और केसन शैम्पू की जोड़ी। एक और कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जनाब। जनाब मोहतरम हमारे साथ चौधरी साहब आ चुके हैं, चौधरी आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: कैसे
1: अली
0: हैं,
1: भाई।
0: कैसे हैं, कैसे हैं जनाब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसकी जात का जो गुजर जाए, वाह वाह शुक्र करते हैं रात भी हम।
0: छुट्टी है या काम पर हैं?
1: अभी छुट्टी है, आज छुट्टी है तो प्रोग्राम सुन रहा हूँ अली
0: अच्छा
1: भाई।
0: जी, वही मैं कह रहा हूँ कि आज जो है चौधरी साहब की आवाज भी हमें सुनने को मिल गई माशाल्लाह। और आप जब भी हमें कॉल कर रहे होते हैं तो हम भी अपनी सोना चांदी जोड़ी के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि भाई ये आपके बालों का पहला प्यार, आपके जुल्फ का पहला प्यार हो सकता है, अगर आप इसे इस्तेमाल करें तो वाकई आपको आपके बालों के अंदर खूबसूरती मिल सकती है, ऐसी खूबसूरती जो आपको शायद पहले किसी ट्रीटमेंट से ना मिली हो।
1: अली भाई, एक तो खूबसूरती गलूचा करीम भी बहुत अच्छी है आपका, है ना, साफ़ानी सोप भी बहुत अच्छा है, बाकी चीजों में भी कमी नहीं है। और रहे शैम्पू, अब जब फिल्म तो बन जाती है, फिल्म में हीरो तो ना हो ना तो फिल्म भी नहीं होती, खाली विलन से फिल्म नहीं बनती। अब आपकी जो शैम्पू है ना, शैम्पू तो काम कर रही है, जो उसका हीरो है ना ऑयल, उसके बगैर काम नहीं चल सकता।
0: काम नहीं चल सकता, बिल्कुल ऐसा ही है।
1: खलील भाई फिल्में तो सारी बनती हैं, जब तक हीरो विलन ना हो ना, उसमें विलन की जरूरी भी है और हीरो की भी जरूरी है। आपका जो यकीन करो शैम्पू है, शैम्पू भी वाकई कोई कमी नहीं है, और जो ऑयल है ना उसकी उसमें ताकत ज्यादा, ऑयल में इसलिए ताकत ज्यादा, एक तो बालों को भी जो जड़ों वाले हैं उनको भी खत्म करता है, दो मुंह वाले बालों को भी खत्म कर रहा है और नए बाल भी निकाल रहा है इंशाल्लाह।
0: हाँ बिल्कुल, असल बात यही होती है आयल की, कमाल जो होता है ना, कमाल मैं कहता हूँ कि अगर आपको सर के ऊपर नए बाल निकल रहे हैं ना, ये फिर उसके अंदर कुछ है भाई, है जी, न्यू ग्रोथ, यानी कि नए बाल अगर कोई आयल निकाल रहा है, और हम ये दावा करते हैं कि भाई आप इस आयल को इस्तेमाल करें, आपके नए बाल निकलेंगे आपके सर में से।
1: असल असल बात तो मैं वही तो कह रहा हूँ, असल फार्मूला ये है, अब बना वो तो 5 लाख साबुन भी है, शैम्पू भी है और ऑयल भी निकले हुए हैं, यकीन करो करीम भी निकले हुई है। अब ये वही वाली बात है कि केमिकलों से भरपूर है वो आर्थिक तौर पर मेडिकल की दवाई खा लो ना,
0: हाँ।
1: उसमें वो तुम्हें फौरन रिजल्ट देगी, और होम्योपैथिक या हकीम की दवाई खाओगे वो तुम्हें सदा सदा रिजल्ट देगी। तो इसमें यही है, एक चीज जब तुम इस्तेमाल करोगे जब ही पता लगता है, खाली मुंह से या देखने से या बात बनाने से पता नहीं लगता, या कोई काम बातों से नहीं होता,
0: बिल्कुल
1: ठीक है ना खलील भाई। मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लेता, तमाम सुनने वालों को भी सलाम खलील भाई, और आपको भी
0: बहुत शुक्रिया जनाब। आरिफ पहाड़पुर FM से हमें सुन रहे हैं जनाब। और केसन, आप देखिए, आप अक्सर सुनते होंगे जो लिसनर हमारे होते हैं वो तकरीबन हर शो में कॉल कर रहे होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो हमारे सारे प्रोडक्ट के यूजर होते हैं, यानी कि ऑयल भी केसन का, शैम्पू भी केसन का, और जैसे कि आरिफ अंकल ने अभी बोला कि भाई ग्लूटा क्रीम तो आपकी बहुत जबरदस्त है, जाफरानी साबुन उससे और जबरदस्त है, शैम्पू भी अच्छा है, लेकिन ऑयल की क्या ही बात है, ठीक है जनाब। अब हाजमा कंट्रोल की हमने बात नहीं की, तो हाजमा कंट्रोल भी इनके घर में इस्तेमाल होता है, ठीक है जनाब। ग्लूटा की बात करते हैं तो ग्लूटा भी इनके घर में इस्तेमाल होती है, क्योंकि जनाब जब कोई एक प्रोडक्ट किसी कंपनी के आपको आंखें खोलती है तो डेफिनेटली आप फिर उसकी और प्रोडक्ट्स को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जनाब केसन जोड़ी बहुत बाकमाल जोड़ी है।

0: जनाब, हेयर केयर जोड़ी कमाल की जोड़ी है जनाब। और ये जो है, हाँ जनाब, ये आपको दो रेंज में मिलेगी।
1: हुआ है तीन।
0: एक आयल हमारा जो है 750 रुपए का है, ठीक है जनाब, और बड़ा वाला जो है 750 रुपए का, छोटा जो है 430 रुपए का है जनाब। तो शैम्पू 390 रुपए का है। देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम। जी
0: जी सोनिया, आप ही सोनिया,
2: सोनिया,
0: आप ही सोनिया,
2: डियर
0: आप ही अमान हमारे साथ ग्लोबल FM 91 से मौजूद है। कैसे हैं आप ही? ठीक हैं आप?
2: शुक्र है। आप ठीक है? बिल्कुल
0: प्रोग्राम सुन रही हैं शुरू से या अभी
2: सुन
0: आंख
2: रही
0: खुली
2: हूँ।
0: है
2: नहीं,
0: आपकी?
2: शुरू सुन रही हूँ।
0: अच्छा, आपको इंतजार रहता है हमारे प्रोग्राम का माशाल्लाह।
2: बिल्कुल
0: अच्छा जी, सुना है खैर खैरियत है? केसन का किरदार आपकी
2: बिल्कुल
0: जिंदगी में चल रहा है? वैसे दिन रात देख लेती हैं
2: बिल्कुल
0: केसन को, दीदार हो जाता है 24 घंटे में,
2: बिल्कुल
0: केसन का
2: चल
0: तो
2: रहा
0: नहीं
2: है
0: होता? अच्छा
2: जी। आज 3 से 4 चीजें तो यकीन इस्तेमाल होती हैं।
0: तीन से चार चीजें हैं, यानी कि माशाल्लाह केसन ऐसा नहीं
2: साबन
0: हो सकता कोई
2: दिया
0: महीना के, यानी कि आपको 24 घंटे के 30 दिनों के अंदर कभी केसन की झलक नजर ना आई हो, हमेशा रोजाना झलक रहती है आपके घर में।
2: बिल्कुल रहती है।
0: जोड़ी भी माशाल्लाह इस्तेमाल करती हैं, शिफाय दर्द भी आपका
2: बिल्कुल
0: इस्तेमाल रहते आपके इस्तेमाल में रहते हैं जी।
2: जी, बिल्कुल
0: तो क्या
2: वही जो
0: नया
2: आप
0: कुछ ऐड
2: शुरू
0: करेंगे
2: में।
0: केसन का? कुछ हाजमा, हाजमा आपका सेट रहता है वैसे? हाजमा,
2: नहीं, आप ठीक नहीं रहता क्योंकि इससे कपरेशन हुआ है ना, पहले ठीक था।
0: ये मैं आपको बताऊं, ये अभी एक बंदे का मैसेज आया हुआ है, हाजी ताहिर इनका नाम है, हाफिज आबाद पहाड़पुर में होते हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि मेरी मिसेज का ना पिछले साल पित्ते का ऑपरेशन हुआ था, तो उनका बहुत बड़ा मसला रहता था, तो जब से ये हाजमा कंट्रोल उन्होंने शुरू किया है तो उनका बिल्कुल मामला जो है ना सेट हो गए हैं। अभी उनका मैसेज भी आया हुआ है, मैं पढ़ूंगा। ये खुद हमारे शॉप पर एक दिन आए थे और आपके ही हवाले से उन्होंने बताया कि उनकी मिसेज का भी पित्ते का ऑपरेशन हुआ। तो आप भी हाजमा कंट्रोल सिरप इंशाल्लाह इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत सारा फायदा
2: जी
0: होगा।
2: बिल्कुल
0: ठीक
2: जरूर
0: है,
2: जरूर। जब आप शुरू में जो मैसेज देती है ना, वो बहुत अच्छा भी होता है, उस पर हम अमल करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है।
0: हाँ ज्यादा बेहतर होता है। आज मैंने बोला ना, वैसे
2: बिल्कुल
0: टेंशन हमने खुद पाली
2: बिल्कुल
0: होती है ना, ऐसी इतनी टेंशन लेनी नहीं चाहिए जितनी हम लेके बैठे होते हैं।
2: बिल्कुल
0: गैर
2: सही
0: जरूरी
2: कह
0: बातों के ऊपर, गैर जरूरी लोगों को हम अहमियत देकर अपना सुकून बर्बाद कर देते हैं।
2: रहे हैं। बिल्कुल, जैसे वो जुमे के दिन आप प्रोग्राम करते थे भाई, वो बहुत अच्छा लगता था ना। मैं जुमे के दिन के
0: वो
2: जरूर
0: अभी
2: शिरकत
0: भी
2: करती
0: जुमे
2: थी।
0: को हमारा होता है, लेकिन आपके वहां पहाड़पुर FM नहीं आता ना?
2: हाँ, नहीं आता ना
0: क्योंकि वो तो मॉर्निंग का
2: वो।
0: शो होता था, तो वो जो है उधर अभी होता है, लेकिन दूसरे स्टेशन के ऊपर हमारा मॉर्निंग शो नहीं
2: हाँ,
0: होता।
2: मुझे बस वो किसी चीज से अगर ज्यादा प्रोग्राम सब अच्छी तरह से सुनती हूँ,
0: हाँ,
2: लेकिन वो जिसे भोपाल कहते हैं वो जुम्मे वाले प्रोग्राम से था मुझे।
0: जुमे वाले, हाँ उसमें तो सारा कंटेंट ही माशाल्लाह जो है वो इस्लामिक
2: बिल्कुल
0: इस्लामिक होता था, और उसमें जो है डेफिनेटली जो है, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आप ना सिर्फ हमारे प्रोग्राम सुन।
2: फातमान को जुरेदन
0: जी,
2: मानू सब सुनने वाले को।
0: ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो

0: लेकिन अब ये हमारे साथ ग्लोबल एफ 91 से हमारी आपी थी और कह रही थी जुमे का शो इनको बहुत ज्यादा इस्लामिक शो हम कंटेंट रखते हैं जुमे का, तो पहाड़पुर के लोग तो सुनते होंगे। ठीक है जनाब, लेकिन जो है इन दोनों स्टेशन के ऊपर मॉर्निंग शो हमारा नहीं आता। देखते हैं जनाब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: जनाब मास्टर फतीउल्लाह साहब टांग से हमारे साथ मौजूद है।
1: जी,
0: कैसे हैं मोहतरम? ठीक हैं आप? अच्छे हैं? बेहतर हैं?
1: बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह।
0: अच्छा जी, सुन रहे हैं लोगों की बातें, वो लोग जो हमारा शैम्पू और ऑयल इस्तेमाल करते हैं और उनकी क्या राय है, आप सुन रहे थे लोगों की बातें?
1: बिल्कुल जी, मुनाजिर सही कह रहे हैं और ये सही प्रोडक्ट है माशाल्लाह। ये भी हाजमा सीरप जो है ये खट्टी कड़ी बेटा ले आते हैं, इसके लिए जो है वो जलन होती है गले में।
0: क्या होती है?
1: मैदे के एतबार से खट्टी कड़ी डकारे आती है किसी को।
0: हाँ बिल्कुल,
1: तो ये अगर पिए हाजमा सीरप
0: बिल्कुल खट्टी डकारे आपकी रुक जाएंगी। ये जो आप बात कर रहे हैं ना खट्टी डकार वाली बात, ये हमने माह रमजान के अंदर लोगों को बताया था कि भाई अक्सर लोग जो है ना जैसे अफतारी करके जाते हैं ना, और अफतारी करते हैं या फिर सहरी करके आते हैं, उनके पास उनको खट्टी डिकारें आती हैं, उसकी भी वजूहत होती हैं। ठीक है जनाब, तो ये बिल्कुल खट्टी डिकारों को रोक देगा, कोई डिकार ही आपको नहीं आएगी इंशाल्लाह इसके बाद। ये अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो खट्टी डिकारे हैं ना, इसकी मुख्तलिफ किस्म के लोग वजूहत बताते हैं, लेकिन हमने डीपली बताया, फिर कभी इसकी इसके ऊपर कभी प्रोग्राम हम करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन ओवरऑल जो भी मैकेनिज्म है ना खट्टी डिकारों का, उसके पीछे ये बहुत खास जबरदस्त काम करता है। गले में जलन तो नहीं होती, लेकिन जो सीने में जलन होती है ना, सीने के अंदर जो जलन होती है, यानी कि मैदे के ऊपर जो आपकी खुराक की नाली होती है ना, वहां पर जलन होती है। जब आपके मैदे के अंदर तेजाबियत ज्यादा होती है ना, जब आप खाना खाते हैं तो वही तेजाब आपकी खुराक की नाली को आ जाता है और आपको जलन शुरू हो जाती है। तो इसको जैसे इस्तेमाल करेंगे, आपके मैदे के अंदर तेजाब की जो रेशियो है ना, वो इक्वल हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी बिल्कुल। ये बहुत ही जबरदस्त है, यकीन कीजिए, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे मैदे के मसाइल के लिए अगर आप एक दफा हमारा हाजमा कंट्रोल सिरप घर लेके आ गए। ठीक है जी, हाँ इसको भी खरीदिए, इस्तेमाल कीजिए और फिर हमें बताइए मास्टर साहब। ठीक है जी,
1: ठीक है
0: जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कुछ बच्चों को पेट में दर्द रहता है, अक्सर आपके घरों में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको वक्तन फवक्तन पेट के अंदर दर्द रहता है, आप ये सिरप घर में लेके रखें भाई, एक ढक्कन देने की जरूरत है, बच्चे को 3 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर जो है वो बिल्कुल शिफायाब हो चुका होगा, जो है पेट का दर्द खत्म हो चुका होगा। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम खलीलवाल साहब, क्या हाल?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नई आवाज है, पुराने यूजर हैं या नए कॉलर हैं हमारे साथ
2: है?
0: जी कौन है, नाम बताएंगे
2: जी,
0: अपना?
2: जी पहली दफा कॉल कर रहा हूँ।
0: अच्छा जी, पहली दफा, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, कौन से एफएम से?
2: जी मैं टांग से बात कर रहा हूँ,
0: अली बात कर रहे हैं। अली भाई आपको हम वेलकम करते हैं अपने शो के अंदर। ठीक है जी, क्या काम करते हैं भाई, काम क्या करते हैं अली भाई?
2: जी
0: मैंने कहा काम क्या करते हैं?
2: जी रक्षा चलाता हूँ।
0: अच्छा जी, रक्षा चलाते हैं, तो फिर रक्षे के ऊपर एफएम सुन रहे होते हैं या हैंड फ्री लगा के सुनते हैं?
2: जी
0: एफएम को अक्सर रक्षे के ऊपर लोगों ने ऑन किया होता है स्पीकर के थ्रू ना, तो आप वैसे सुनते हैं या हैंड फ्री लगा?
2: बस जब सारे होते हैं तो बस सुन लेते हैं सर।
0: अच्छा जी, सुन लेते हैं, तो आज पहली दफा सुना या कुछ अरसे से सुन रहे थे?
2: एक जगह पे खड़ा हो जाते हैं तो बस टाइम पास के लिए मतलब थोड़ा रेडियो एफएम लगा लेते हैं।
0: अच्छा, मैंने कहा आज पहली दफा सुना है या काफी अरसे से सुन रहे थे हमारा प्रोग्राम?
2: कभी कभार सुनते हैं सर, क्योंकि बाजार में होते हैं, रक्षा होते हैं, मतलब सवारियां होती हैं, तो थोड़ा
0: चलो ठीक है, तो
2: खड़े होते हैं टाइम पासिंग के लिए। तो
0: क्या किस चीज ने आज आपको मजबूर किया है कॉल करने के लिए हमारे शो?
2: जी वो उस दिन सारा आप बता रहे थे ना, उसका वो केसन का नाइट बंडल 3-in-1 पैकिंग में मंसूर जनरल स्टोर टांग में,
0: वो नहीं था वहाँ पर?
2: हाँ तो मैं उधर गया हूँ उसके पास, तो उसके पास था नहीं, तो वो आपको वैसे मैसेज भी उसने किया, वो कभी एक चीज मुझे देते कभी दूसरी चीज, मैंने कहा नहीं यार वो एक ही डब्बे में
0: तीन
2: चीजें बांध है, वो आप मुझे दें।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो
2: लेकिन उसके पास नहीं थे।
0: नहीं थे बिल्कुल, उन्होंने मुझे फौरन कॉल की है और उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं है, तो मैंने कहा आपको एक दो दिन के अंदर जो ऐसे इतने बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो कुछ उनको गए हुए थे, तो ये भी बेसिकली अलग अलग आपको मिल सकते थे ना, स्प्रे भी वहां पर पड़ा होगा, क्रीम भी पड़ी होगी और सोप भी पड़ा होगा, लेकिन वो हमारा एक पैक होता है 3-in-1 नाइट बंडल जिसको कहते हैं ना, वो सस्ता भी पड़ जाता है,
2: जी
0: तो वो इनशाला अगले एक दो दिन के अंदर वहां पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप वैसे भी वहां पर जाएं तो मेरा रेफरेंस देंगे तो इनशाला आपको नाइट बंडल उसी रेट में विदाउट पैकिंग के होगा, ठीक है जनाब, लेकिन मिल जाएगा जब तक वहां पर वो नहीं पहुंचता। तीन चीजें इकट्ठी होंगी उसके साथ, 600 में आपको तीनों
2: सही
0: के तीनों
2: सही
0: मिल जाएंगी वहां पर, चले भी जाए। नाइट क्रीम होगी, जाफरानी साबन होगा या मिल्की सोप होगा, और साथ में ब्यूटी स्प्रे होगा, स्किन टोनर हमारा, ठीक है जी।
2: जी बिल्कुल। और वो दूसरा बिस्मिल्ला पैकेज अभी तक चल रहा है?
0: बिस्मिल्ला पैकेज अभी तक चल रहा है, आप वहां पर जाएंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह।
2: सही है सही।
0: ठीक है जी।
2: और सर ठीक है, आप
0: बहुत
2: बताइए
0: शुक्रिया
2: खान का
0: जनाब।
2: मौसम कैसा है?
0: मौसम आज शदीद गर्म है। हाँ जी, वो जो
2: अच्छा,
0: सर्दी वगैरह थी वो खत्म हो गई है, मौसम जो अच्छा था वो खत्म हो गया।
2: पहले एक प्रोग्राम, पहले डीआई खान का जब रेडियो होता था ना सर, डीआई खान रेडियो स्टेशन, तो कोई डेरा ते खुला ना सेरा ते बड़ी सोनी महफिल ते बड़ी मतलब में जेरे लाले जी होना लग भी होने यार, वो सिस्टम आजकल कोई नहीं रेडू।
0: हाँ बस वो तो सर वक्त नाल बहुत सारे शिया खत्म थी गया ना, है जी,
2: इवे नाल इवे
0: बहुत सारे शिया वक्त नाल खत्म थी गया।
2: गाछा फोन आई,
0: हाँ वो हर शे वक्त नाल तब्दील थी नहीं वैंदी, ऐसे वक्त हर शे तब्दील कर चुके हैं, तो माहौल
2: दा प्रोग्राम बहुत मजेदार प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मतलब है जेरे ना बहुत नॉलेज दे विच इजाफा थी ना, बहुत सोने सोने तुसा गालियां ते वाकिया ते बहुत मजे दे मतलब दे गुफ्तगू करन ने ने, ते अल्लाह ताला तुहाकु सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी।
0: आमीन आमीन, बहुत मेहरबानी सी तुहाडे मोहब्बता इन सी, थैंक यू सो वेरी मच।
2: खुश रहो अल्लाह
0: से। आप टांग से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं हमारे साथ, और मैसेज जो है वो आप लोगों के और भी पड़े हुए हैं, तो क्यों ना हम मैसेजेस को पढ़ लें, टाइम हमारे पास कम है जनाब, और आप लोगों का मैसेजेस अगर किसी के रह जाए तो फिर वो जो है हमें बुरा भला कहते रहते हैं जी, मुंह पे ना कहें पीछे कहते रहते हैं, हमें पता है भी किसी दौर में हम भी लिसनर रहे हैं, ठीक है जनाब। आरजे कौन होता है? वही होता है जो ज्यादा है, तो हम भी किसी वक्त में लिसनर रहे हैं, और जो आरजे हमारे मैसेज नहीं पढ़ता था ना पूछो फिर। दुर्योधन हमारे साथ है, दो यूजर ऑफ ओनली किशन प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद जी, कैसे हैं आप एंड आपकी फैमिली मेंबर्स एंड आपके सब लिसनर कैसे हैं जी? वो भी ठीक ठाक है। एंड केयू हिना सिस्टर मोस्ट वेलकम टू द प्रीशियस शो। एंड केसन कैसी हैं आप? मिस यू सो मच। एंड उस्ताद जी मुझे 3 साल हो गए हैं केसन नेचुरल को यूज करते हुए, मगर आज तक किसी एक प्रोडक्ट से जरा बराबर भी मुझे नुकसान नहीं मिला, फायदे ही फायदे मिले हैं। और मैंने सबसे पहले केसन नाइट बंडल यूज किया और अभी तक यूज करती आई हूँ। केसन मिल्की सोप के बाद मोस्ट इफेक्टिव स्किन टोनर अरके गुलाब और हमारा विटामिन सी यूज करने से मिले, वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकती कि मिल्की सोप और स्किन टोनर इन्होंने जब से इस्तेमाल किया है, यानी कि हमारा नाइट बंडल, तो इनको मजा आ गया। टांक वालों को मैं ये रिकमेंड करती हूँ जी जनाब, टांक वालों को कहती हैं कि भाई कुछ और खरीदना है या नहीं खरीदना, यानी कि मैं तो कहता हूँ मेरी केसन की हर प्रोडक्ट आप खरीदें, लेकिन अरूबा जो 3 साल से हमारी यूजर हैं कहती हैं कि मुझे जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा, और मैं केसन का नाइट बंडल रेगुलर यूज करती हूँ, और खिला खिला सा गुलाब का चेहरा इनका आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जनाब ये नाइट बंडल यूज करती हैं। केसन सोप से मुंह धोने के बाद कहती हैं कि स्किन टोनर का इस्तेमाल जरूर करें, इससे आपको ये फायदे मिलेंगे, ये जो अक्सर कंपनियां आपको नहीं बताती हैं, कहती हैं कि साबुन से मुंह धो और बस गेम खत्म, फेस वॉश से चेहरा धो मुंह खत्म, नहीं भी स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। स्किन केयर की जो कहानी है वो 3 स्टेप में होती है कि आप साबुन से या फेस वॉश से चेहरा धोएं, उसके बाद तौलिए से खुश करने के बाद स्किन टोनर का इस्तेमाल जरूरी है। तो जनाब ये कहते हैं कि ये फायदे मिलेंगे कि चेहरे की शगुफ्तगी और तरोताजगी बढ़ेगी, दाग धब्बों और झुर्रियों से आपको निजात मिलेगी, जिल्द में निखार, बदलते हुए मौसम के असरात से चेहरा महफूज रहेगा, चेहरे से खुश्की खत्म होगी, स्किन खूबसूरती और दिलकश लगेगी, और बेरौनक जिल्द जो है गायब और चेहरा दिन भर के लिए शादाब नजर आएगा। केसन मिल्की सोप विद केसन ब्यूटी स्प्रे लगाएं, खुद को जिल्द के अमराज से बचाएं। यकीन कीजिए मैंने अल्लाह को जान देनी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो पढ़ाया गया है लिखाया गया है, अल्लाह को जान देनी है, कि अगर हमने किसी को कहा हो कि भी हमारे लिए कुछ ऐसा लिख के भेजो, ये हमारे यूजर हैं जिन्होंने खूबियां और फायदे महसूस किए हैं और हमें लिख कर बताया है कि भी केसर का जब नाइट बंडल आप इस्तेमाल करते हैं तो कितने आपको अच्छे फायदे नजर आते हैं। आप लोगों ने सुन लिया, प्रोग्राम मीठा है, सब सुनने वालों को सलाम। मोहम्मद अजहर जो है पहाड़पुर से है, मोहम्मद हमजा खेमटा भी मौजूद है और सबको सलाम कह रहे हैं जनाब, सब लिसनर्स को सलाम कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। मोहम्मद जीशान गुलामे वाला से, आपका शो बहुत अच्छा है, हम टाइम निकाल कर हमारे लिए आते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम सुनने वालों को सलाम हो गया। जी जनाब, आप लोगों के लिए वक्त निकाल के लाते हैं और इसमें आपको जबरदस्त बातें बताते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ की ग्रूमिंग के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। सलाम भाई, कैसे हो? आज भी शो बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत तो नहीं हूँ मैं, लेकिन एक बार देख लो तो सामने वाले को उलझन में डाल देता हूँ। मैं भी केसन के प्रोडक्ट लिए हैं, अगर रिजल्ट मिला या ना मिला तो मैं आपकी शॉप पर आऊंगा। कहाँ पर है? और हमारे पहाड़पुर के दोस्त नहीं आ रहे हैं, लगता है पहाड़पुर के लोग इस मुकाबले में नहीं आना चाहते। नहीं, पहाड़पुर के लोग आ रहे हैं। रोनी है हमारे साथ, भाई हमने कहा हुआ है आपको डेरा आने की जरूरत ही नहीं है भाई, केसन की कोई भी प्रोडक्ट आपको फायदा ना दे। टांक वाले सुन रहे हैं आप, अगर आपको लगता है कि केसन का 750 रुपए का बालों वाला तेल कैसे जमा करूं 750 रुपया, ठीक है जनाब, अगर आपको लगता है कि केसन का शिफाए दर्द 700 रुपए का है, कहीं ऐसा ना हो रिजल्ट ना मिले, तो आपको 3 दिन का फ्री ट्रायल है। 3 दिन आप हमारी कोई भी प्रोडक्ट है इस्तेमाल करें, अगर आपको लगे कि भाई इसने फायदा नहीं दिया है, पहला आपके पैसे अमानत हैं भाई हमारे पास, वापस करके दीजिएगा। हाजी ताहिर हमारे साथ हाफिजाबाद से है और अपने तमाम तर दोस्तों को जो है सलाम कह रहे हैं जिन्हें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई, भाई मेरे अच्छा जी बाल जो हैं वो वक्त से पहले वाइट हो रहे हैं और हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, तो भाई शादाब शुकूर भाई, ये जो जोड़ी है ना,
3: जुल्फ की सच्ची मोहब्बत,
0: हाँ जी,
3: हर जुल्फ का पहला प्यार,
0: आपकी हर जुल्फ का पहला प्यार जनाब केसन हेयर ऑयल है और प्यार करने वाले कभी धोखा नहीं देते, और आप जब ये इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपकी पहली चाहत बनने जा रही है, पहला प्यार, तो आप देखेंगे जनाब आपके बालों के अंदर कितना निखार आता है और आपकी वक्त से पहले जो बाल सफेद हो रहे हैं ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितने हो चुके हैं इसके बाद मजीद वाइट नहीं होंगे अगर आप केसन हेयर ऑयल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जनाब। और जो हो चुके हैं आप केसन ऑयल को इस्तेमाल करेंगे, अच्छा जी केसन हेयर ऑयल जो है इसका फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक इसका विजिबल इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं कलर इफेक्ट, ठीक है, कोई इसके अंदर केमिकल नहीं है जो आपके बालों को कलर करता है, बल्कि इसके जो अज़ा और इसके अंदर जड़ी बूटियां हैं ना, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो नेचुरली आपके बालों का कलर डार्क करेंगी। डार्क से मुराद ये होता है कि अगर आपके बाल काले हैं लेकिन बिल्कुल ब्लैक काले नहीं है, जिसको इस तरह की में कहते हैं शमोर काले, उस तरीके से नहीं है तो भैया बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे आपके बाल, ठीक है जनाब। सफेद बालों की बात नहीं कर रहा, वो जो डिम होते हैं बाल उनकी बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आपके भूरे बाल हैं, भूरे हैं जनाब, ब्राउन है, ठीक है जनाब, तो वो डार्क ब्राउन हो जाएंगे। ये कलर इफेक्ट रखता है, आपके बालों को डार्क करता है, क्योंकि जनाब ये जो ऑयल है इसके अंदर एक जड़ी बूटी शामिल है जो कि 17 अज़ा है इसके अंदर, एक इसके अंदर है हाइबिस्कस, इसका नाम है हाइबिस्कस, ये उर्दू में इसको जिन्स पटोह कहते हैं, ये एक जड़ी बूटी है। पुराने वक्तों में जब लोग बालों को कलर करते थे ना, उस वक्त कलर तो नहीं होता था, तो इसी का सफूफ सरसों के तेल में डालकर अपने बालों के ऊपर लगाते थे, बालों को कलर करते थे। ये जो हमारे ऑयल का कलर रेड है, आपको केसन के जो ऑयल का कलर है ना वो रेड मिलेगा, रेड कलर, रेड मैरून कलर है हमारे ऑयल का, तो जब आप लगाएंगे तो आपके ये बालों को डार्क करेगा, यानी कि ये बालों की खूबसूरती बढ़ाता है हर लिहाज से भाई, वो जब हम कहते हैं ना कि आपके जुल्फ का पहला प्यार है।
3: प्यार केसन, केसन, केसन, केसन हेयर केयर जोड़ी,
0: जोड़ी खरीदिएगा जनाब, ठीक है जनाब। ऑयल और शैम्पू को एक साथ इस्तेमाल कीजिएगा, बाज़ात ये होता है कि बाज़ लोग क्या करते हैं, जो शैम्पू पहले इस्तेमाल कर रहे होते हैं वही इस्तेमाल करते हैं और तेल हमारा ले लेते हैं, मैं कहता हूँ कि जो शैम्पू होता है ना वो सारे किए किराए के ऊपर पानी फेर देता है अगर गैर मियारी शैम्पू है। तो भाई अगर आपने प्योर खूबसूरती देखनी है अपने बालों की तो भाई हमारा ऑयल रात के वक्त इस्तेमाल करें, 6-7 घंटे लगे रहने दें और उसके बाद जो है शैम्पू का इस्तेमाल करें। इसी वजह से तो हम कहते हैं केसन जोड़ी, इतना जोर क्यों लगाते हैं हम चीज के ऊपर कि भाई कोई बंदा भी इस जोड़ी से महरूम ना रहे। ठीक है जनाब, केसन शॉप अकबर प्लाजा में मौजूद है मियां कमर्शियल मार्केट के पीछे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल तक के लिए इजाजत देंगे, अल्लाह निगहबान।

आप हमें मैसेज करना चाहें तो सॉरी आप मैसेज करना चाहें तो मैसेज क्रिएट मैसेज में जाके RAT कैपिटल लिखकर थोड़ा सा स्पेस दीजिए, नाम लिखिए, मैसेज टाइप कीजिए और फौरन हमें 85-83 पे सेंड कर दीजिए। इंशाल्लाह हम आपके प्रोग्राम को शामिल कर लेंगे। और साथ ये कि दूसरी बात ये कि डियर सामीन और डियर नाजरीन के अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट के लिए हमारा जो नंबर है वो 09063 है 511-488-0963-511-488, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं जी।

0: तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांकी नशिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल्ले अवेलाजी सुनत अमल्ले
3: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो
2: नो बिल्कुल मायूसके गई मां मायूसके गई मां अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे
3: और दोनों मालूमात दे पारा पदग नंबर काल कवले शे
2: 0319-55-23-404
1: Your music, your request.
4: This is radio station. Radio Aman.

काय जी हा मनन ब्रो मनन ब्रो मी चात नाही मिस डी तो हुए का जरा ते वसाना बटन ओ खोले विदा वाया नो संदर्भ उधरी गयो तब खबर शुरू हो के